साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।

Number one radio station, FM 92.6, UCP की दुनिया, UCP की दुनिया. Number one radio station, FM 92.6, UCP की दुनिया, UCP की दुनिया.

0: ये है पाकिस्तान की आवाज यूसीपी रेडियो FM 92.6। इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: ये है पाकिस्तान की आवाज UCP रेडियो FM 92.6। इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6, UCP ki duniya.

0: महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, बात कर रहे हैं हम शुक्रगुजारी और नाशुक्री के दोनों चीज़ों के ऊपर। और सर इरफान अली फानी साहब हर मामले में हमारी बड़ी खूबसूरती के साथ रहनुमाई फरमा रहे हैं। तो हमने ब्रेक से जाने से पहले वादा किया था कि हम बात करेंगे शुक्रगुजारी के तरीकों के ऊपर। तो सर अब आप थोड़ा सा इस चीज़ पर रोशनी डालिए कि हर चीज़ की एक मेथोडोलॉजी होती है, तो यकीनन शुक्रगुजारी के कुछ तरीकाकार भी होगा, तो उस तरीकेकार के ऊपर बताइए कि क्या क्या तरीके हैं जिनसे शुक्रगुजारी का अमल जो है वो किया जा सकता है।
2: अच्छा, अजवद इसमें यह है कि जिस चीज की, जिस शख्स की, जिस हस्ती की आप शुक्रगुजारी करना चाहते हो, सबसे पहला हक तो उसका यह है कि उसको अहमियत दी जाए। जब आप उसको अहमियत नहीं देंगे तो वो कभी भी आप उस पर शुक्रगुजार हो ही नहीं सकते हैं। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि 1870 से लेकर 1890 तक का जो इरा है, मुख्तार मसूद बहुत खूबसूरत राइटर हैं, मेरे पसंदीदा लिखारियों में से एक हैं। उन्होंने अपनी किताब आवाज़ दोस्त में ये एक वाक्या लिखा हुआ है कि 1870 से लेकर 1890 तक वो इरा है कि जब अल्लाह ताला ने, खालिक कायनात ने, पूरी दुनिया के जितने भी खित्ते हैं ज़मीन के, हर खित्ते में बड़े लोगों को अता के तौर पर पैदा किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जना अता के तौर पर पैदा हुए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, स्टॉलन, लेनन, चर्चिल, डिगाल, जितने बड़े बड़े नाम आप ले लो जिनकी फिलॉसफीज पे, जिनके नज़रियात और तसव्वुरात पे आज की हमारी मुआशरती, सियासी और समाजी ज़िंदगी की बुनियाद है, वो तमाम फ़लसफे देने वाले लोग इन 20 सालों में पैदा हुए। अब जिन अकवाम ने तो उन अता की हुई शख्सियतों को अहमियत देते हुए उनकी कदर की, उनकी अजमत की कदर की, उनकी अजमत के गुण गाए, अल्लाह ताला ने उन खित्तों को दोबारा से अजीम लीडर्स और अजीम कायदीन दे दिए।
1: बेशक।
2: और अगर आप बड़े सगीर की मिसाल अपने सामने रखें कि यहाँ के लोगों पर भी उसी इरा के अंदर बड़े बड़े लोगों की अल्लाह ने नवाजिशात की, बड़े बड़े लोग अनायत किए। गांधी है, वो चंद साल पहले आ गए थे कायदे आज़म से, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, अलामा मोहम्मद इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और जितने भी तहरीक अलीगढ़ के बड़े बड़े नाम आपको मिलते हैं इन्हीं अरसे में पैदा हुए।
1: लेकिन
2: आज आप अब देखो कि इस पूरे हमारे खित्ते के अंदर आपको कोई बड़ा कायद नजर नहीं आता, कोई ऐसा विजनरी, ऐसा फिलोसोफर, ऐसा आपकी समाजी, सियासी, इल्मी नज़रियात के ऊपर, फिक्री नज़रियात के ऊपर असर अंदाज होने वाली शख्सियत आपको नज़र नहीं आती। क्यों नज़र नहीं आती? क्योंकि उन अताओं पर आपने, अताओं का शुक्रिया अदा करना था, उनको अहमियत देनी थी। आपने ये सवाल किया था ना कि शुक्रगुजारी के तरीके क्या होते हैं।
1: बिल्कुल।
2: कि आपको मैंने एक तोहफा दिया, आप मशकूर होने की बजाय मगरूर हो जाएं और मगरूर होते हुए उसको फेंक दें, तो मैं दोबारा कभी भी वो चीज आपको नहीं दूंगा। जब तक आप मेरी चीज को अहमियत नहीं दोगे, तब तक दोबारा से मेरा मन नहीं करेगा कि मैं आपको कोई चीज दूं। आपको अल्लाह ताला ने गाड़ी दे दी,
1: बिल्कुल,
2: शुक्रगुजारी का पहला हक ये है कि उसको अहमियत दो। अब उसकी अहमियत के तरीके क्या हैं? कि उसको हिफाजत से चलाओ, उसकी देखभाल करो, वो नेमत जो अल्लाह ने आपको दी हुई है उसको तहफ्फुज और उसको अच्छे तरीके से चलाने के तमाम जो मामलात हैं उनको साथ लेकर चलो। अल्लाह ताला ने आपको रिज्क दिया, आपके पास एक अच्छा बाग है फलों का, आप उसकी हिफाजत करो। आपको अच्छा घर मिला, आपको अच्छी जॉब मिली, आप रो रहे हो 20 साल से एक नौकरी के लिए, आपको नौकरी मिल गई, दो हफ्तों के बाद आप शिकायत करना शुरू कर देते हो कि भाई ये जो दफ्तर में मेरे साथ ये है या ये है या ये है। ये वो फिनोमिनाज हैं कि जब हमारे पास चीज नहीं थी तो हम बिलबिला रहे थे, दुआएं सदाएं इल्तजा।

0: कर रहे थे, चीज मुझको मिल गई, तो कुछ ही अरसे के बाद उस शुक्र गुजारी की जगह पे क्या चीजें आ गई,
1: ना शुक्री कर,
0: शिकायतें आ गई, शिकवे आ गए। और जब भी कहते हैं कि जो शुक्र गुजारी होती है ये कहने के लफ्ज नहीं होते हैं, शुक्र गुजारी का ताल्लुक एहसास से होता है। शुक्र गुजारी एहसास का नाम है, लफ्जों का नाम नहीं है। लिहाजा शुक्र गुजारी का सबसे पहला तरीका ये है कि जो भी नेमत, जो भी अता आपको जिंदगी में मिलती है, हम पूरे का पूरा हमारा जिस्म अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, अता है। अगर जवानी एक बहुत बड़ी नेमत है, हमारी यूथ इस वक्त सुन रही होगी, मेरे तलबा और तालिबात जिनको अमूमन मैं कहता रहता हूँ कि ये जिंदगी के उस बेस्ट टाइम में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है। अब ये जो आपके 15 से लेकर 25 साल के 10 साल हैं, वो आपकी जिंदगी का बेस्ट, जिसको बेहतरीन वक्त है, जब आपकी आंखों से लेके आपकी समातों से लेके आपके लबो लहजे से लेके आपके जिस्म के हर अज़ा में एनर्जी अपने अरूज पर है, थकावट आप पे होती नहीं है। अच्छा, अब शुक्रगुजारी क्या है कि ये जवानी दोबारा नहीं आनी। अमूमन हमारे बच्चे कहते हैं सर जवानी फिर नहीं आनी,
1: जवानी फिर नहीं आनी।
0: एक तो मेरे पास ये है कि मैं ये कहूं कि जवानी फिर नहीं आनी, लिहाजा इसको मैं जाया कर दूं उन कामों के ऊपर जो कल को मेरे लिए तबाही का सबब बन जाए,
1: वो प्रॉब्लम है।
0: मैंने पार्टीज में, फिल्म्स में, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ये सारा वक्त लगा दिया। दूसरे ने भी ये सोचा कि हाँ जवानी फिर नहीं आनी, ये अल्लाह की अता है, इसको मैं उन कामों में इस्तेमाल करूं जो कल को मुझको रिवॉर्ड देगी। लिहाजा उसने जब अपनी जिंदगी के, अपने बदन उसका पूरी कुव्वत में था, उस वक्त उसने वो काम किए कि उसका बुढ़ापा जो था वो बड़ा असुदा हाल हो गया। घर में बैठा इज्जत भी थी, शोहरत भी थी और पैसा भी था। और जिसने इस अता की नाशुक्री की, जवानी को अहमियत ना दी कि ये बड़ी अहम है, और इसको उन कामों पे लगा दिया कि जो गैर अहम थे, फिर जिंदगी ने उसको इतना गैर अहम बना दिया कि वो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने वालिदैन से सबसे मुंह छुपाता फिर रहा होता है। लिहाजा ये मेरा पैगाम है उन तमाम बच्चों को भी, उन मेरे तमाम तलबा और तालिबात को भी, कि जिनको ये वक्त मुयसर आया है, जिनको ये यूनिवर्सिटी मुयसर आई है, पढ़ने के लिए वसाइल मुयसर आए हैं, इसका बच्चों पहला हक ये है कि इसको अहमियत देते हुए इसको अपनी, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने पे आप लगाओ, बजाय इसके कि अपने आप को डिस्ट्रक्टिव आप कर लो। तखरीबकारी में मत लगाओ इन सारी चीजों को, तामीरकारी में आप इन सारी चीजों को लगाओगे तो फिर ये जिंदगी है जो आप पे भी मुस्कुराएगी और फिर जिंदगी पे आप भी मुस्कुराएंगे, वरना लोग आप पे हंसेंगे।
1: जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने। और कुछ लोग कहते हैं कि जो शुक्रगुजारी होती है उसका ताल्लुक खुश नसीबी से भी होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे ब्रेक के बाद। सर इरफान से दोबारा गुफ्तगू करेंगे, आप सब तो के लिए सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। वी विल बी राइट बैक।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीबी की दुनिया और प्रोग्राम जावेदा जिंदगी के साथ आपका मेजबान मोहम्मद अली अजवद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे थे खुश नसीबी के एलिमेंट के ऊपर कि क्या शुक्रगुजारी का ताल्लुक खुश नसीबी से भी है। इस पर हम बात करेंगे सर इरफान फानी से। सर आप क्या कहेंगे इस जुमले के बारे में?
1: अच्छा, एक लफ्ज है शुक्रगुजारी और दूसरा लफ्ज है खुश नसीबी।
0: जी
1: वासिफ अली वासिफ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। वो कहते हैं कि खुश नसीब, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पैसा मिल जाए तो मैं खुश नसीब हो जाऊंगा, कुछ कहते हैं कि मुझे शोहरत मिल जाए तो मैं खुश नसीब हो जाऊंगा, कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि मैं मेरे पास एक अच्छा घर हो जाए तो मैं खुश नसीब हो जाऊंगा। असल में खुश नसीबी का ताल्लुक ना पैसे से है, खुश नसीबी का ताल्लुक ना अच्छे घर से है, खुश नसीबी का ताल्लुक ना अच्छी जॉब से है। खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। खुश नसीब वासिफ अली वासिफ साहब ये कहते हैं वो है जो अपने नसीब पर खुश है, और वो लोग जो अपनी अपनी किस्मत पर खुश होते हैं उन्हीं को खुश किस्मत कहा जाता है, और जो अपनी किस्मत पर खुश नहीं होते हैं उनके पास बेशक गाड़ियां आ जाएं, बड़े बड़े बंगले आ जाएं, बहुत बड़े बड़े बाग आ जाएं, जो मर्जी जिंदगी में उनके पास चीजें मिल जाएं, वो कभी भी खुश किस्मत नहीं हो सकते, क्योंकि खुश किस्मती का ताल्लुक होता है इंसानी खुशी के साथ। इंसान जब खुश होगा तो वो खुश किस्मत होगा। अगर वो पैसा आपको खुशी नहीं दे सका तो पैसा खुश किस्मती की अलामत नहीं होगा। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अब बहुत बड़ा आला स्टेटस अगर आपको खुशी नहीं दे सका तो वो आपके लिए खुश किस्मती की अलामत नहीं है। तो खुश किस्मत वो होता है जो अपनी किस्मत पर खुश हो जाए, बेशक वो एक गरीब घर में रहने वाला क्यों ना हो, वो एक बहुत बड़े घर में रहने वाला क्यों ना हो, एक बहुत बड़े सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में रहने वाला क्यों ना हो, जो जहां पे खुश होगा वही उसकी खुशकिस्मती है। और खुशकिस्मत उन्हीं को हम कहेंगे जो अपनी किस्मत पर शुक्रगुजार होते हैं। तो बजाय इसके कि अपनी किस्मतों पर आप शिकवे करें, किस्मतों की आप शिकायतें करें और लोगों को बताएं कि यार साड़ी किस्मत दे विच ते अयो लिखा होया है, फलां के पास ये है, फलां के पास ये है, वो कहते हैं तो रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। अब इस तरह की भी जो चीजें
0: जिंदगी में,
1: हाँ ये भी पॉपुलर इसीलिए हुआ कि हमारी जिंदगी के अंदर जब हम शिकायतें करते हैं, ये भी एक शिकायत का तरीका है कि रुल तो गए हैं पर चस बढ़िया ही है। अब खुश किस्मती का ताल्लुक किसके है? आपकी किस्मत पर खुश हो जाने से है। लिहाजा वो लोग जो चाहते हैं कि वो खुश किस्मत कहलाए जाएं, उनको चाहिए कि जो जिस जगह पे वो मौजूद हैं उसकी शुक्रगुजारी करते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें, तभी किस्मत भी आप पे खुश हो जाएगी।
0: अच्छा, फितरत से रिलेटेड थोड़ी बात अब करते हैं। क्या समझते हैं कि अगर शिकवा फितरी अमल है तो शुक्रगुजारी फितरी अमल क्यों नहीं?
1: अच्छा, इस पे ना मुझे बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक बड़े मेरे फेवरेट राइटर हैं, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक कुआं खुश्क ना हो जाए हम पानी की तारीफ नहीं कर सकते।
0: ओह गॉड,
1: कि जब तक कुएं में पानी है हमें नहीं पता कि ये कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए।
0: बेशक
1: कि इंसान की फितरत का ये तकाजा है, इंसान की फितरत आप कह लो उसका ये मुतालबा है कि जो मौजूद है उसके लिए हमेशा से वो ना खुश है, उसको वो चीज खुशी नहीं दे रही, लेकिन जो अदम मौजूद है,
0: वो कहते हैं
1: जो
0: अपनी प्लेट
1: हाजर नहीं है, जो हाजर नहीं है वो हमारे प्रेजेंट को खराब कर रहा है, और जो मौजूद है हमारे पास उसको हम अपने प्रेजेंट की खुशहाली के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारा पता सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम या तो गुजरे हुए कल में जिंदा रहते हैं या आने वाले कल में जिंदा रहते हैं। ये जो आज है बीच में, ये जो इस वक्त लम्हा गुजर रहा है, अभी आप जो लोग गाड़ियों में आ जा रहे हैं या जिनकी समातों तक मेरी आवाज जा रही है, ये वो लम्हा है जिस लम्हे को आप अपनी खुशी का सामान बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस लम्हे में अपने माजी के किसी नाकामियों को या महरूमियों को कोसते हुए गुजार दें या मुस्तकबल के अंदेशों या वसवसों को कोसते हुए गुजार दें तो मौजूदा लम्हा भी आपने शिकवे और शिकायत में ही जाया कर दिया। अगर इसी मौजूदा लम्हे में आप अपने मुस्तकबल को सजाने या संवारने के लिए कुछ अमली जद्दोजहद करना शुरू कर देंगे तो ये गुजरे हुए लम्हे आपको कल आपको आप माजी बन जाएंगे, और यही फिर माजी आपकी खुशहाली का जो है वो बुनियाद फराहम करेगा और کل مستقبل بھی پھر آپ کا خوشحال ہو جائے گا.
0: اچھا سر میرے مجھے ایک چھوٹا سا ایک سوال آپ سے کرنا ہے کہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ ہم بچپن میں بڑے ہوتے ہیں, جب ہم جوانی کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے اندر وہ ناشکری والا ایلیمنٹ اجاگر ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو ہم پھر اس بعض اوقات ہم پھر کل کو اپنی جب جاب وغیرہ میں بھی لگ جاتے ہیں یا کچھ ایسا ویسا, تو اس کے بعد جو ہے ناشکری کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جو چیزیں ہم جس چیز تک پہنچنا چاہتے ہیں ہم اگر اس چیز تک پہنچ بھی جاتے ہیں ناشکری کر کے شکوہ کر کے, تو اس وقت تک جب ہم اس چیز کو اچیو کرتے ہیں تو اور زیادہ ہرس اور لالچ بڑھ جاتا ہے اور پھر ناشکری شروع ہو گئی, تو انسان کی زندگی تو پھر اسی میں ساری ختم ہو جاتی ہے. تو کیا اس چیز سے بچا کیسے جائے؟ کیونکہ
1: یہ جو آپ نے ہرس اور لالچ کی بات کی ہے یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے. ایک بات عجبت ہمیں یاد رکھنی پڑے گی, وہ یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نہ وہ قسمت کا لکھا ہے, نہ وہ کسی کا ہم پر ظلم ہے, نہ ہی کسی دوسرے کی ہمارے خلاف سازش ہے. جو کچھ ہمارے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے وہ ہمارے انتخاب کا رد عمل ہوتا ہے, وہ ہمارے انتخاب کا نتیجہ ہوتا ہے. جو چیز ہم زندگی میں انتخاب کرتے ہیں, میرے پاس دو راستے ہیں کہ صبح میں اٹھا ہوں, اٹھ کے ایک تو میرے پاس یہ راستہ ہے کہ یار موسم بڑا اچھا ہے انجوائے کروں, دوسرا یہ راستہ ہے کہ یار میری کلاسز ہیں میں نے یونیورسٹی میں جانا ہے. لہٰذا یہ دونوں انتخاب ہیں, گھر میں رہنے کا انجوائمنٹ اگر میں کرنا چاہ رہا ہوں یا اور موسم سے لطف اندوز ہونا چاہ رہا ہوں اس کے کانسیکوینسز کچھ اور ہیں, اور یونیورسٹی کے آنے کے کانسیکوینسز کچھ اور ہیں. تو میرے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ میرا جو فیصلہ ہے, جو میرا انتخاب ہے مختلف آپشنز کے درمیان, وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا, وہ یہ ڈیٹرمن کرے گا کہ میری زندگی کل کو کس طرح کی ہوگی. لہٰذا وہ کہتے ہیں نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, کہ آپ کے اپنے انتخابات اور انتخاب کے اوپر آپ کی جد و جہد اور کوشش اور محنت کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب لوہے محفوظ بھی آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ بتا اب تیری رضا کیا ہے, ہم وہی کریں گے جو آپ چاہتے ہو. یہ آپ کی ڈٹرمینیشن ہے, یہ آپ کی ڈیووشن ہے, اور دعا کا تعلق بھی آپ کی ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہوتا ہے. لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم شکایتیں کریں, شکر گزار ہوتے ہوئے ہمیں اپنی مشقت اور محنت کو جاری رکھنا چاہیے.
0: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بہت اچھی بات کی, اور یہاں پر ایک اگین ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہوا جاتا ہے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, FM 92.6 UCB کی دنیا سنتے رہیے. وی بی رائٹ بیک.

इस सुर और ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6।

0: आपको एक बार फिर मैं वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम जावेदा जिंदगी में। आपका मेजबान मोहम्मद अली अजबद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो हम अब सर से बात करेंगे शिकवे की। सर थोड़ा सा मुझे आप ये बताइए कि अगर शिकवे की आदत हो तो इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर नाशुकरी का एलिमेंट इंसान में एग्जिस्ट करता है तो इस आदत को कैसे जो है वो खत्म किया जा सकता है।
1: जी अजबद कदबी, आपने गौर किया इस बात पे कि जब हम गुस्से की हालत में होते हैं तो कितना लंबा और तवील हम भाषण दे देते हैं, और जब हम किसी की तारीफ करने लगते हैं तो हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं। जब किसी को सराहने की ज़रूरत पेश आ जाए, किसी की तौसीफ करने की ज़रूरत पेश आ जाए, या किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो और हम कहें जी हम इसकी तारीफ़ करें, तो एक या दो लाइनें बोलते हुए हमारी ज़ुबान गुंग हो जाती है। क्यों? हमने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी में गुस्से को इतनी शिद्दत से अपने ऊपर हावी किए रखा, और इतनी शिद्दत से गुस्से में हमने इतने अल्फाज बोल छोड़े हैं कि वो अब हमारे लाशऊर का हिस्सा हो गए हैं। गुस्सा बाद में आता है और धड़ाधड़ जो तकरीर है गुस्से में वो हम पहले करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हम किसी की तारीफ करने लगते हैं, तारीफ क्योंकि हमने ज़िंदगी में सराहना कभी कोशिश ही नहीं, किसी को सराहने की कोशिश ही नहीं की, हमने कभी किसी की तौसीफ या तारीफ करने की कोशिश ही नहीं की, लिहाजा यही वजह है कि जब हम किसी की तारीफ करने लगते हैं, किसी के अच्छे काम की तौसीफ करने लगते हैं, तो हमारी जुबान एक जुमला या दो जुमला बोलने के बाद बंद हो जाती है और हमें समझ नहीं आता कि अब हम आगे मजीद इसको क्या कहेंगे। यार तुमने बहुत अच्छा किया, यार ग्रेट जॉब, यार एक्सीलेंट, इसके अलावा हमारे पास कोई लफ्ज ही नहीं है। लेकिन गुस्से में आप जरा किसी को बुरा भला कहने की देखना कि आपके पास 5 मिनट आप उसको गालियां देते रहोगे, उसके खिलाफ अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे, आप थकोगे नहीं, आपकी डिक्शनरी के अल्फाज कम नहीं होंगे। क्यों? आपकी प्रैक्टिस में जो चीज रही वो क्या थी? गुस्से को अपने ऊपर हावी करना और गुस्से में बोलते जाना। कभी किसी की तारीफ करने की आदत ही नहीं डाली गई। ऐसे ही शिकवे से अगर बचना है तो शुक्रगुजारी की आदत डालनी पड़ेगी। जब तक हम शुक्रगुजारी की आदत नहीं डालेंगे, शुक्रगुजारी को हर रोज अपने मामूलात में नहीं लेके आएंगे। मैं तो ये बाजूकात सोचता हूँ कि हमें रात को सोने से पहले ये देखना चाहिए कि आज अल्लाह ताला ने हमें किन किन नेमतों से सारे दिन में नवाजा है। कितनी दफ़ा आपको खाना नसीब हुआ है, एक अच्छी नौकरी नसीब हुई है, लोगों के साथ अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, कितने सारे लोगों ने आपके साथ अच्छी बातें की हैं, वो सारी बातें इस लायक हैं कि उन पे खुश हुआ जाए। एक मैं एक पायलट की आपको एग्जांपल देता हूँ कि पहली जंगे अजीम के दौरान एक पायलट ने बड़ी शोहरत पाई और उसका नाम था एडिक रिकनबेकर। अब ये वो पायलट था कि जो 21 दिन तक बहरे ओकियानूस में एक छोटी सी कश्ती पे जिसको अपने दिन गुजारने पड़े। जंग के दौरान किसी जजीरे में था, जंग हुई, इसकी कश्ती जो है वो अलहदा होगी और वो अकेला अपनी कश्ती में बहरे ओकियानूस के अंदर घूमता फिर रहा था। 21 दिन तक ये बंदा जिंदा रहा उस कश्ती के ऊपर। आप खुद अंदाजा लगाओ उस कश्ती में कितनी चीजें होंगी इसके पास खाने के लिए, या कितनी चीजें होंगी इसके पास पीने के लिए। और जब ये पहली जंगे अजीम की मैं आपको बात सुना रहा हूँ, जब उस बंदे से ये पूछा गया कि भाई आपने इतना सारा वक्त जो है वो समंदर में गुजारा और इंतहाई कम रिसोर्सेज और वसाइल के साथ तुमने जिंदगी के 21 दिन गुजारे, तो इस तजुर्बे से आपने क्या सीखा, तो उसका बड़ा खूबसूरत जवाब था। उसने कहा कि जितना पानी तुम पी सकते हो अगर वो तुम्हारे पास है, और जितना खाना तुम खा सकते हो अगर वो तुम्हारे पास है, तो जिंदगी में किसी चीज का शिकवा बनता ही नहीं है। मतलब जो जिंदा रहने के लिए उस वक्त उसको पता था ना कि पानी की अहमियत क्या है, कि मेरे पास ये 3 बॉटल्स पानी की हैं और इससे मैंने, मुझे नहीं पता कब मुझे कोई मंजिल या साहिल मिलेगा कि मैं दोबारा अपनी दुनिया में जा पाऊंगा। अब उसकी कोशिश थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकूं। वो जो पानी का एक एक कतरा था ना, एक एक कतरा उसके लिए उम्र भर की शुक्रगुजारी का सबब बना। एक एक लुकमा जो उसने वहां पे खाया, महफूज कर करके खाया, अपने पसीने को भी पोंछ के वो बोतल में डाल देता था, ठीक है, कि पानी की जो चीज वो ज्यादा उसकी मिकदार पूरी रहे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता चलता है कि ये नेमतें कितनी बड़ी हैं। उसके जवाब बड़ा गौर तलब है अगर हम इस पे गौर करें कि जितना पानी आपको जिंदा रख सकता है अगर वो आपके पास है, और जितने खाने की आपकी जिंदगी को जरूरत है अगर वो आपके पास है, तो फिर तो शिकवे का तुक्की नहीं बनता। अच्छा, अब बाकी जितने भी शिकवे हम जिंदगी में करते हैं नाजवत, वो हमारा मसला ये है कि हमने अपनी ख्वाहिशों को अपनी जरूरत बना लिया है। ایک چیز ہوتی ہے ضرورت انسان کی، ایک چیز ہوتی ہے انسان کی خواہش۔ ضرورت ہماری کیا ہے؟ ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں لباس چاہیے اور رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔
0: بالکل،
1: اگر یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں تو اب ہمیں ویسے شکوا نہیں بنتا۔ اب شکوا کب ہوگا؟ کہ جب میری خواہش ہے کہ میرے پاس فلاں کمپنی کا موبائل فون ہونا چاہیے، فلاں کمپنی کی گاڑی ہونی چاہیے، فلاں ٹائپ کے میرے جوتے ہوں اور فلاں طرز کی میری جو ہے کلائی پہ اوپر گھڑی ہونی چاہیے۔ یہ ہماری ضرورتیں نہیں ہیں، یہ ہماری خواہشیں ہیں۔ اور جب آپ خواہشوں کو اپنی ضرورت بنا لوگے تو پھر یہ جو ضرورتیں ہیں ان کی کبھی شکر گزاری آپ نہیں کرو گے، کیونکہ ان ضرورتوں پر تو آپ کی نظر ہی نہیں جا رہی ہے۔ آپ اتنی دفعہ دن میں پانی پی رہے ہو، آپ کو تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ میں یہ پانی پی رہا ہوں۔ ذرا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو بجلی کا پتہ چلتا ہے نا کتنی اہم ہے، لیکن جب نہیں جاتی تو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ پانی کی لوڈ شیڈنگ ہو یا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو، کیسے لوگ بلبلا اٹھتے ہیں۔ کراچی میں جب پانی کا جب یہ کرائسس وغیرہ آتا ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں لوگوں کے، کہ وہ ایک ٹب رکھا ہوتا ہے اور ایک ایک ہفتہ ان کو پتا ہم نے اس ٹب سے نکالنا ہے، تو ان کو پتا کہ پین جب میں نے منہ ہاتھ بھی دھونا ہے تو اتنی مقدار میں پانی سے ہی میں نے دھونا ہے، اور وہ ایک ایک قطرہ آپ کے لیے نعمت بن جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں اس چیز کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے کہ وہ چیزیں جو ہماری ضرورت کی ہیں ان کے اوپر ہم تبھی شکر گزار ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی خواہشوں کو اپنی ضرورت نہیں بنائیں گے۔ خواہشیں کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارما مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ کہ ہر خواہش آپ کی پوری نہیں ہوتی، جتنی بھی خواہشیں بڑھا لو وہ کم ہی کم ہیں۔ لہٰذا اگر ضرورتوں آپ اپنی خواہشوں کو ضرورت بنا لوگے تو یہ ضرورتوں تو پھر پوری زندگی آپ کی پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔
0: جی لسنرز، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام سنا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہم نے آج گفتگو کی شکر گزاری پہ اور ناشکری پہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے، اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہر نعمت سے نوازا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اور شکر گزاری کریں، اور ناشکری کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو نکال کے اپنی زندگی میں سے کہیں دور پھینک دیں۔ تو اب آپ نے ہماری جو گفتگو سنی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور نیکسٹ ویک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور تب تک کے لیے آپ سنتے رہیے FM 92.6 UCB کی دنیا۔

0: अहम ऐलान। PKLI हॉस्पिटल में एक मरीज को AB पॉजिटिव की अशद जरूरत है। खून का अतिया देने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 03214692297।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.7।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: अहम ऐलान। PKLI हॉस्पिटल में एक मरीज को AB पॉजिटिव की अशद जरूरत है। खून का अतिया देने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 03214692297।
1: सामईन, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 पर अब आप सुनेंगे खसूसी फीचर मरियम मुख्तार।

0: बेटी जो कि खुदा की रहमत समझी जाती है, जब किसी घर में पैदा होती है तो उस घर को अपनी शरारतों और नन्हे कदमों से पुर रौनक बना देती है। मरियम भी अपने घर की रौनक थी। वालिद से बातें करना, वालिदा से लाड करना, सहेलियों से मजाक मरियम की आदत में शामिल था। मरियम की तरह मरियम के ख्वाब भी बेबाक थे। वो अक्सर ही अपनी वालिदा को अपनी शहादत से मुतल्लिक तैयार रहने का कहती थी।
1: सुबह 9 बजे मरियम का फोन आया कि बाबा मेरी मामा फ्लाइंग है, अगर मैं आ गई तो मैं फोन करूंगी, अगर मैं नहीं आई तो आप समझ जाना। ये वो हर फ्लाइंग में कहती थी, स्पेसिफिक उसने उस दिन के लिए नहीं। और मेरा हर वक्त यही जवाब होता था कि हाँ मरियम ठीक है, कोई बात नहीं, और आप चले जाओ, नहीं आओगे तो मुझे इधर उधर से खबर पड़ जाएगी।
0: बाप की उंगली पकड़कर चलने वाली बेटी जब शहीद होकर बाप के सामने आती है तो इसके बाप की आंखें तो नम होती हैं, मगर सर फख्र से ऊंचा होता है। मरियम के बारे में इनके वालिद कर्नल मुख्तियार शेख का कहना है कि
2: तो मुझे एक आम बच्चे की तरह वो लगती थी, मैंने कभी महसूस नहीं किया कि शी इज़ अ डिफरेंट, लेकिन यस अब जब मैं करता हूँ उसकी शी इज़ नॉट हियर, तो मैं महसूस करता हूँ कि उसमें क्या क्या खूबियाँ थी। कभी कभी मैं उसको कहता था मरियम कि आपकी डिग्री क्या होगी, BSc होगी, BS ऑनर्स होगी, क्या होगी, तो मुझे कहती बाबा मुझे आई एम लीस्ट कंसर्न, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, मेरा ये बैज लग जाए, मेरा जो विंग लग जाए फ्लाइंग का, बस ये मेरी जो है एम है।

कॉम की इस अजीम बेटी के फाइटर जेट का रابطہ जब कंट्रोल रूम से मुनकता हो गया तो वह समझ चुकी थी कि अब उसकी ख्वाहिश के पूरे होने का वक्त आ गया है। अपने जेट को आबादी से दूर ले जाकर मरियम ने अपने मुल्क के लोगों की जानें तो महफूज कर ली, मगर अपनी जान अल्लाह के हां रहन रखवा दी और हमेशा के लिए तारीख के औराक में अमर हो गई। मार्च 2016 को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मरियम को तमगा बसालत से नवाजा गया। पूरी पाकिस्तानी कौम मरियम मुख्तियार के इस जुर्रतमंदाना कारनामे पर उन्हें सलाम पेश करती है। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको कायम रहना है कयामत की सहर होने तक।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

अहम ऐलान। PKLI हॉस्पिटल में एक मरीज को AB पॉजिटिव की अशद जरूरत है। खून का अतिया देने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 03214692297।

0: अहम ऐलान, PKLI हॉस्पिटल में एक मरीज को AB पॉजिटिव की अशद जरूरत है। खून का अतिया देने के लिए इस नंबर पर रابطہ करें 03214692297।
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को वो दागे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अलामा इकबाल का नाम तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। आप बयक वक्त एक अजीम शायर, फलसफी और सियासतदान थे। बरसगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों के इज्तमाई शऊर की बेदारी और तरबियत, मुसलमानों की तहजीबी और फिक्री तामीर नो के सिलसिले में उनकी खिदमात हमारी मिल्ली तारीख का रोशन बाब है। अलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को बाजार चोड़ी गिरा, मोहल्ला कश्मीरिया, जिला सियालकोट में पैदा हुए। आपके अबाओ अजदाद सप्रू गोट के कश्मीरी पंडित थे जो गालिबन 17वीं ईस्वी के आखिर में हल्का बागोश इस्लाम हुए और तकरीबन 100 साल बाद अलामा मोहम्मद इकबाल के दादा शेख मोहम्मद रफीक कश्मीर से हिजरत करके जिला सियालकोट में क़याम पज़ीर हुए।

यूरोप पहुंचकर इन्होंने बिल्कुल एक नई दुनिया देखी। यूरोप का इल्मी अंदाज फिक्र, तर्ज हयात और सनतें जिनकी बदौलत इंसान की खिदमत का काम लिया जाता था बहुत पसंद आई, लेकिन दूसरी तरफ इनकी खराबियां देखकर बड़ी बेजारी पैदा हुई। 1905 में यूरोप से वापस आए तो इस्लाम, इस्लामी अकायद और इस्लामी इत्तेहाद के पुरजोश मुबल्लिग बन चुके थे।

1908 में वतन वापसी से चंद माह कबल मुस्लिम लीग की लंदन शाख की मजलिस आमा के रुकन बने। 1926 में अलामा इकबाल 4 साल के लिए लाहौर की मुस्लिम नशिस्त से पंजाब की सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। रुकन होने की हैसियत से इन्होंने कई मुफीद कवानीन मंजूर करवाने में अहम किरदार अदा किया। 1927 में मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। हिंदुस्तान के सियासी तस्फिया और दस्तूरी मसाइल पर गौर करने के लिए 1930 से 1932 तक लंदन में होने वाली 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। 1930 में आपने मंटो पार्क में 2 कौमी नजरिया पेश किया जिसको अक्सरियत ने कबूल किया।

अहम ऐलान। PKLI हॉस्पिटल में एक मरीज को AB पॉजिटिव की अशद जरूरत है। खून का अतिया देने के लिए इस नंबर पर रابطہ करें 03214692297।

0: मौसीकी के सुर और ताल,
1: सुर और ताल,
0: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार,
1: और तकरार,
0: सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

अहम ऐलान। PKLI हॉस्पिटल में एक मरीज को AB पॉजिटिव की अशद जरूरत है। खून का अतिया देने के लिए इस नंबर पर रابطہ करें 03214692297।

0: अहम ऐलान। PKLI हॉस्पिटल में एक मरीज को AB पॉजिटिव की अशद जरूरत है। खून का अतिया देने के लिए इस नंबर पर रابطہ करें 03214692297।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 90।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

अहम ऐलान। PKLI हॉस्पिटल में एक मरीज को AB पॉजिटिव की अशद जरूरत है। खून का अतिया देने के लिए इस नंबर पर रابطہ करें 03214692297।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

अहम ऐलान। पीकेएलआई हॉस्पिटल में एक मरीज को एबी पॉजिटिव की अशद जरूरत है। खून का अतिया देने के लिए इस नंबर पर रابطہ करें 03214692297।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया FM 92.6।

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन,
1: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए। UCP की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6